0: रिपशु सुनते बिंगन सरे एक बुनन इन इम्मेनु ई
1: तिन्ते हो आरे बिन में वो ते बनोस्ता ते से तिन होत नारे इन बिन शाइसिस बे क्रिस्टोस इन तफकैन इन नो वेना ने वो
2: सबात रोसे मलाइका वो कुफ यूसबिहुन अमाम अद्दबित अल कुल